फ्राइडे की तरह एक बार फिर हम आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत कुछ आज भी स्टूडियोज में होने वाला है क्योंकि हमारे साथ आज कुछ गेस्ट ज्वाइन इन होने वाले हैं। इन गेस्ट से हम बात करते चलेंगे। याद रखिए हमारा फ्राइडे का जो शो है, यस फ्राइडे शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय द मैन हिमसेल्फ जगी भोपाल फ्रॉम